मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट

हजूरी विच जाके बैठ गया हूं, चरण फड़ लेना, अपना मस्तक सतगुरु के चरणा ते रख देता है और गुरु महिमा करन लग्या है। रोम रोम विच गुरु दा प्यार समाया है।

इस महिमा विच मन बिरते एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु के चरणों ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

सिमरन करदिया दुखां दा भार उठ गया, जिवें शरीर हलका उठदा जा रहा, शरीर उठदा जा रहा, शरीर आकाश वल नहीं, आकाश वल नहीं। Why do I

अंदर बोल दिए, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज।

नूरो नूर हुंदी जा रही है। सिमरन दे नूर नाल ये मिट्टी भी चमक गई है, चमक गई, चमक गई।

उम्र सुना भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गए, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच

सिमरन समा गया है हिरदे दी धड़कन विच, इस सिमरन हिरदे दी धड़कन विच, दिल दी धड़कन विच समा गया है।

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास।

0: गुरु साहिबानी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ रसना पवित्र करिए पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ करो ते सारे गज वज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: बाबर बादशाह दी करड़ी कैद अंदर गुरु नानक ने पीसिया चकिया सन तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन नीहा कौम दिया कीतिया
1: पक्कियां सन।
0: मीरी पीरी दे मालक पातशाह ने जुलम राज दिया उड़ाइया फकिया सन तेग बहादुर हिंद दी बन चादर पत्ता लहदिया अनेकां
1: ढकियां सन।
0: जदों सारिया हिलिया तो गल लंगी तेगा गुरु गोबिंद ने
1: चकिया सन।
0: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद लतीफ लिखता है The death of Guru Arjan is a great turning point in the history of the Sikhs. Pav Guru Arjan Dev Ji di shahadat Sikh itihas vich bada vadda mod sabit hoi. Pancham Patshah Guru Arjan Dev Ji di shahadat to baad 11 saal di umar chardi jawani chheve Patshah Guru Hargobind Ji Maharaj Guru Gaddi utte baithe. Bhai Gurdas Ji likhde han पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरुपारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगो बिंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ योदा
1: बहु पर पुकारी।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा योदियो चंगे शस्त्र घोड़े अते जवानिया भेट करो। अमृतसर साहिब इलाही फौजी छावनी विच बदल गया। 1609 ईस्वी विच गुरु पातशाह ने अकाल तख्त दी सिरजना कीती। साहिबा ने कहा एक ढाडी जथा मंगवाया जावे। भाई विधि चंद जी नथे अते अब्दुल्ले दे ढाडी जथे नू लेके आए। जदों नथे ने फेरिया सरंगी ते गज ते अब्दुल्ले ने मारिया ढड ते हथ तां सूरमिया दे डौले फरकन ला दिते। फिर जदों लगियां धौंसियां ते चोटां तां पंजाब दी सर जमीन गूंज उठी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मीरी ते पीरी भगती ते राज शक्ति माला ते खंडा जोश ते होश शांति ते क्रांति बाणी ते कुर्बानी सब एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां हे

आपके उदय हैं। तंगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, तेरे समान संसार में

आगे मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जाऊंदा। सत सिहत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोविंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आखिया, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुनाया, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनी है पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हों, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति होई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हों सिखा दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सत सगत बोलो श्री आख्या, और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुई, ए अंदर थोड़े जे सिख

साहब इस श्लोकां दे विच इस मिथ्या संसार दे उते ब्रह्म ज्ञान बख्श रहे हैं। त्याग और वैराग दे उते प्रकाश पा रहे हैं, पर ये अचारिकत है। ये सारे श्लोक साहब ने दिल्ली कैद दे विच अचारे हैं। इना विच बड़िया गुजियां रमजा हैं। एक गुजी रम

को पायो तिन तिन अपनो राज लायो जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज चलायो तिन तिन अपनो राज चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नवाज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई ता मैं संसार दे अंदर अवतार तारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्ट्री दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदियां होया साडी ए सोडी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह

संसार चो राज करदिया होया राम चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रु ते भरत ए चारे दे चारे चले गए ते सीता दी कुखों दो राजिया ने जन्म लिया सी सुत बहुर भय दोए राजा राज पाठ उन्हीं को साजा उन्हां दा नाम सी लव ते कुशु।

मां ने आशीष दी सी फरीद नूं। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। सतगुरु पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास साहिब पातशाह जी ने लिख दिता।

बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाण लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रहो रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं एक गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपान दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। हिंदुस्तान विचों मुगल राज दा हमेशा वास्ते खात्मा कर दिता। इतिहास गवाह है कि गुरु साहिबां दियां कुर्बानियां ने इस जुल्मी राज दा अंत कर दिता।

तू कोई भी है किसे भी जात दा तू अमृत छक ले तेरी हुण कोई जात नहीं इको वर्गा रूप दिता और हुक्म कीता कि जिन्हें जुलम दे खिलाफ लड़ना है जाता पाता तू उत्ते उठना है मनुखता दी सेवा करनी है आओ मेरे नाल खड़े हो जाओ इत्थे मर के जीवन मिल जाए इज्जत गुआ के जीवना

गुरु साहबां तू जाना वारन वाले प्यारे सिंह दूसरे पासे पहाड़ी राजियां दी 10,000 करीब दे फौज पहाड़ी राजियां ने 3-4,000 फौज पिछे छड़ दीती बाकी फौज लैके गुरु साहबां दे मुकाबले ते आ खलोती सिंघा दी मोर्चेबंदी करके गुरु साहबा ने एक गल कही सिंगो मोर्चे विचों किसे ने बाहर निकल के लड़ना नहीं अगर लड़ना भी पवे वार करके फिर मोर्चे विच आ जाओ अगर दुश्मन हार के भजे ते भजे दा पिछा नहीं करना जदों तक साडा हुक्म ना आवे लड़ाई शुरू हो गई एक पासे तनखावां लैण वाले ओ सिपाही जिन्हां जाना भी बचानियां ने एक पासे ओ सिंह जिन्हां गुरु दे चरणां तों जाना वारनियां ने धर्म वास्ते लड़ना है दुनिया दे भले वास्ते लड़ना है लड़ाई ऐसी शुरू हुई तीरां गोलियां दी जिवें बरसात शुरू हो गई लाशां ते लाशां चढ़ गईयां हर पासे हाहाकार मच गया राजियां दी फौज रड़े मैदान सी इन्हां दा नुकसान ज्यादा हो रहा है सिंह मोर्चे विच सन इस करके इन्हां दा बचा है राजियां ने सलाह कीती इस तरह ते साढ़े सारे सिपाही मारे जाएंगे क्यों ना मोर्चियां ते जा पई तगड़ा हल्ला करके ए राजे अपनी फौज लेके सिंघां दे मोर्चियां ते जा पए उधर गुरु साहिबां दा हुक्म आया किसे ने मोर्चे विचों बाहर नहीं निकलना कमसाण दा युद्ध मचिया सिंह मोर्चे विचों निकलदे ने वार करदे ने फिर मोर्चे विच जा वड़दे ने ते राजियां दा नुकसान बहुत आउण लग पिया राजियां दी सेना इकदम मोर्चियां ते आ पई तां सिंह मोर्चियां विचों बाहर निकल आए ओ हथ दिखाए ते राजियां दे पैर पिछे पैण लग पए उधर साहिबां दा हुक्म आया कि किसे ने भजी हुई फौज दा पिछा नहीं करना ते सिंघां ने ऐसी मार मारी कि राजियां नूं बची हुई सिपाही लैके पिछा भजना पिया पर जिहड़े सिंघ सन जित दी खुशी विच अज पहली वारी गुरु दा हुक्म भुल के अन सुनिया करके भजी जांदी फौज दे पिछे भज पए कि अज इन्हां नूं करो करी पहुंचा के

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असा सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी रहो इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिकर नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बनियां। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे स्याणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आंदी है कोठी कंबदी है ते लर्जा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होर होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ये फिक्र रखिए कि गुरु महाराज जी आप किहो जिहा जीवन जी के सानू सदियां तक साडे सामने काया पलट के आए जुगत ओहियो रखी जोत ओहियो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए अवतार तारिया औतरे ते उन्हां ने सदियां साडे सामने जी के दसिया। ग्रस्ती सन कोई तारकुल दुनिया नहीं सन रिश्तेदारां वाले सन साडे वांगो कारोबार वाले सन साडे वांगो पर इउं दुनिया विच रह के पानी विच रह के किवें निर्लेप रहे ने। पानी तो मुराद है माया बहुरंगी माया अनेकां रूपां वाली माया जिन्हें वड्या वड्या नूं छलिया पर किवें इस नूं छलिया गुरु साहिबान जी ने ते उहदे प्यारे महापुरशां भगतां संत जनां भगौतियां ने।
ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸਰੁੱਤ ਕਬ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਤਕਾਰ ਲਈ, ਹਿੱਤ ਲਈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ, ਰਾਹਬਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਵਨ 239

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाल अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए, इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ गई, अपना बोले आप सुन।

संसार दा आना जाना तो बड़े है, पर इस आउन तो बाद जान दे समय नबेड़ा सच ते होना। सदा रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असी रोज पढ़ने, कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, क्योंकि रहना जो नहीं, जेड़ा आज है कल नहीं होएगा, जो आज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे पढ़ते सुनते हैं, कदे यकीन आउंदा कदे नहीं आउंदा। और बहुत कुछ ऐसा भी है जिदे बारे लिखिया भी नहीं गया, असी कुछ सुनते भी नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत कुछ संसार ते ऐसा ही होया जिदी कोई निशानी बाकी नहीं है, जिदी निशानी भी कोई नहीं, जिक्र भी कोई नहीं, उन्हूं सच किवें कहोगे। और होर चार दिनां नूं जिहड़ियां निशानियां साडे कोल पिछले इतिहास दीआं कायम ने, हो सकदा है ना रहण। आउण वाला युग जिस वेले असी गल्लां करिए, कहण इह झूठ है, इह मन्नण विच नहीं आउंदा। जो कल सी अज झूठ हो गया, जो अज है कल झूठ हो जाएगा। ओदे बारे धन गुरु नानक कहिंदे ने, कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ फैशन हार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नेह लगा, विसरिया करतार। गलत हो गया काम, कूड़ नाल मोह पा लिया, कूड़ नाल नेह पा लिया। जो रहने वाला सच सी ओदी संभाल ना कीती, ओनू चेते ना कीता, विसरिया करतार। महाराज सुचेत कराउंदे ने, किस नाल की चै दोस्ती, जो तुर गया ओदे नाल दोस्ती। कि जो रहना है, जो है मौजूद है, जिसने अगे भी रहना है, ओदे नाल प्यार। के जो तुर गया ओदे नाल प्यार, जो छड गया ओदे नाल प्यार। अज एक छड गया, और जो छड गया है ना, एक इशारा कुछ संकेत दे गया। एक महापुरुष ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदा हर बच्चा जो माता दे गर्भ तो जन्म लैंदा है, एक सूचना लैके पैदा हुंदा है कि मैं मरण वास्ते आया। वरे गंढां बीतदियां जांदियां ने, दिन बीतदे जांदे ने, बच्चा वड्डा हो रहा है, लेकिन कबीर जी कहिंदे ने दूजे पासों भी गिणदा, उधरों भी वेख लै। जननी जानत सुत वड्डा होता, मां कहिंदी पुत्र वड्डा हो रहा, पर कबीर दीआं अखां होर पासों वेखदियां ने। ओ कहिंदे ने, इतना को ना जाने जे दिन दिन औध घटत है, ये तो जिंदगी घट